बम बम बम। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पट पट प्यारे दंगल दंगल।

0: लिसन, मैं पैरिस में अकेली हूँ।
1: नो
0: यार, इतनी रातों में कहाँ जाऊंगी?
1: आई डोंट नो।
0: देख, अकेली लड़की, अनजान शहर, कुछ हो गया।
1: अच्छा देख, बैड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछलेना ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना।

0: अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है।
1: Fly boy, yeah, I'm a life up high boy, yeah, tu rakh teri rai boy, yeah, humse jalta tu why boy, don't hate on me bro, main naturally cool, tu tumhe hai class to main hu tera cool, rule na tode hum karte hai bendo, shuru na kare par karte hai endo, thode seedhe hum thode thode back, hum aage baki saron mein lag, so baat ki baat hai ke hum chahe kuch bhi na kare bete usne bhi swag।
0: अरे घूटो में स्वैग है।

அரகூட்டமே சுவாக हम लाइफ पे हाय बॉय ये तू रख तेरी राय बॉय ये हमसे जलता तू वाय बॉय डोंट हेट ऑन मी ब्रो मैं नेचुरली कूल तू जो में है क्लास तो मैं हूँ तेरा कूल रूल ना तोड़े हम करते हैं बेंडो शुरू ना करे पर करते हैं एंडो थोड़े सीधे हम थोड़े थोड़े ब्लैक हैं हम आगे बाकी सारों में लैग हैं सौ बातें की बातें हम चाहे कुछ भी ना करे बेटे उसने भी स्वैग है।

सारी न करे बेटे उसने भी स्वाद अरे वो तो मैं स्वाद अरे वो तो मैं स्वाद

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

कितने मन तो फोटो तीनो तीन लाई दीना है लाई नुना मीठो भटको पीपल पाते आठ को तीनो तीन लाई दीना है लाई तीनिया फिर बना के गरम ता धाना तुमरो मान पेट लीना है लाई माया को हंसे मन

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन और विकास कला की जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।